0: प्रोग्राम में जिसमें हिस्सा ले रहे हैं सुरनाम का सभी मशहूर टॉपर्स और ये खास टॉपर का प्रोग्राम जो मैंने कहा शुरू है एक खास मशहूर गाने वाले से। ये शख्स माइक्रोफोन आने से पहले ये भी कहना मैं मुनाफा समझता हूँ कि यहाँ देखो वहाँ देखो या रात की सपना देखो, यहाँ सुनो या वहाँ सुनो, हर एक महफिल में रौनक ही रौनक है।
1: रोज देखिला तो है

0: कबूल है,
1: कबूल है,
2: कबूल है। हल्दीराम कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है।
0: मुझे भी।
3: हाँ मैं देखता हूँ दादी, आप मेरे साथ आइए।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ फॉरगेट इट।